0: හවස 6යි විනාඩි 9යි.
1: किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो